मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ते वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल बुरे गुलगुल, वाह वाह वाह वाह। किशोर कुमार, लता मंगेशकर ड्यूएट, मदन मोहन कोहली स्कोर द म्यूजिक, राजेंद्र कृष्ण रोड द लिरिक्स, बिना का नंबर 11 इन 1956। एंड द कैस्ट ऑफ भाई भाई वॉज अशोक कुमार, किशोर कुमार, ए वेरी फ्यू मूवीज वेर दे एक्टेड टुगेदर, वन ऑफ देम कम्स टू माइंड, चलते का नाम गाड़ी एंड बंदी 1957 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट निम्मी बॉर्न नवाब बानो वॉज द मेल फीमेल लीड, निरपा रॉय एंड श्यामा, ओम प्रकाश बख्शी, डेविड इब्राहिम चोलकर, डेजी रानी शुक्ला, इंदु शिवराज हैड सपोर्टिंग रोल्स। दिस मूवी हैड लॉट ऑफ ग्रेट सॉन्ग्स बाय द वे, आई वांट टू प्ले टू मोर ऑफ देम। द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिक्चराइज्ड ऑन किशोर कुमार, निम्मी सिंगिंग डांसिंग अवे, डेविड इब्राहिम चोलकर अकॉम्पनिंग ऑन ढोलक, स्लंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, लोकेशन इज मलबार हिल, वालकेश्वर, हैंगिंग गार्डन्स एटसेट्रा इन बॉम्बे। दिस सेकंड सॉन्ग ऑफ दिस मूवी इज लता मंगेशकर सोलो, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई पैसा चोर, कोई मुर्गी चोर, कोई अंडा चोर, कोई दिल का चोर। फनी सॉन्ग पिक्चर इज वेरी हैप्पी, निम्मी सिंगिंग एंड डांसिंग अवे, डेविड इब्राहिम चोलकर ऑन ए ढोलक, स्लंग फ्रॉम हिज नेक, सेकंड सॉन्ग ऑफ द मूवी। एंड द थर्ड वन फ्रॉम दिस इज ए गीता दत्त सोलो, बिना का नंबर 5 इन 1956, फास्ट टेम्पो येट अनअब्रेसिव सॉन्ग, picture on very happy and bubbly Shyama, unaware that Ashok Kumar is listening and watching. Ae dil mujhe bata de tu kis pe aa gaya hai, ae dil mujhe bata de tu kis pe aa gaya hai, wo kaun hai jo aakar khwabon mein chha gaya hai. This movie bhai bhai by the way shows a lot of Bombay locations, that's kind of pleasing to see, because not many things are produced in the city of Bombay. This is AVM Productions social drama, a Hindi screen adaptation of Tamil film Rathapasam, and the song Dil Mujhe Bata De, the two songs down the road, became Madan Mohan's earliest hits. Enjoy the two songs.

ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिनांक नंबर 5 इन 1956 फ्रॉम द मूवी भाई भाई 1956 मूवी। गीता दत्त वॉज डू सिंगिंग, ओनली शी कुड डू जस्टिस ऑफ दिस टू दिस काइंड ऑफ फास्ट टेम्पो काइंड ऑफ सॉन्ग, फास्ट टेम्पो एट व्हाट आई कॉल्ड अर्लियर अन अब्रेसिव सॉन्ग। पिक्चर एंड वेरी हैप्पी एंड बबली शामा अनअवेयर्स दैट अशोक कुमार इज लिसनिंग एंड वॉचिंग। Madan Mohan Kohli's first major hit. The next song comes from movie Raj Hutt, 1956. Mukesh Lata Mangeshkar duet. Shankar Jaikishan's music. Shailendra wrote the lyrics. And of course, Shailendra's poetic talent is obvious in this. The cast of this movie, Raj Hutt, was Madhuwala, born Mumtaz Jahan Begum Dehlavi. Pradeep Kumar, born Sital Batabeyal. Supported by Sohrab Modi, who was the producer and director of the movie. Ulhas, Murad, Kammo, Tuntun, Helen, Nazir Kashmiri. The story is basically of two kings who are long-term enemies. One's daughter and the other's son fall in love and all kinds of complications happen. Everything turns out all right at the end. The song is a romantic song pictured in Pradeep Kumar and Madhuwala, romancing on a full moon, lit night. Ye vaada karo chand ke saamne bhula to na doge mere pyar ko. ये वादा करो चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा सहारा मिलेगा मेरे प्यार को।

0: आप ही एंजॉयड द रोमांटिक सॉन्ग फ्रॉम राजहट, ये वादा करो चांद के सामने. नेक्स्ट टू सॉन्ग्स कम फ्रॉम मूवी न्यू दिल्ली. कैस्ट वॉज लीडिंग कैस्ट वॉज किशोर कुमार एंड वैजंती माला बाली. दे आर सपोर्टेड बाय नाजिर हुसैन, नाना पलसेकर, राधा किशन, जबीन जलील, धुमाल, मुमताज बेगम, ब्रह्म भारद्वाज, इंदुशो राज, मूलचंद एटसेट्रा. दिस मूवी बाय द वे romantic comedy with a message. The story is about a Punjabi boy, Anand, played by Kishore Kumar, and a Tamil girl, Janaki, played by Vaijanathi Mala, fall in love with each other, but unfortunately they are opposed or separated by their families due to north-south and caste prejudices and social status considerations. Late in the movie, Kishore Kumar masquerades as a Tamil to woo Vaijanathi Mala's father. Nana Palsikar plays that role, and Vaijanathi Mala masquerades as a Punjabi to woo Kishore Kumar's father. Nazir Hussain plays that role. After a lot of drama, everything works out just fine. Kishore Kumar and Vaijanathi Mala made three movies prior to this: New Delhi, Ladki 1953, Miss Mala 1954, Pehli Jhalak 1954, and then two movies subsequent to this: Aadmi 1957, Rangoli 1962. The two songs I want to play for you. फर्स्ट वन मिलते ही नज़र आप मेरे दिल में आ गए. अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए. आई एम गोइंग टू प्रोसीड द सॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ डायलॉग बिटवीन किशोर कुमार एंड वैजयंती माला. ही एसेंशियली गोज टू अ म्यूजिक स्कूल प्रिटेंडिंग टू वॉन्ट टू लर्न सिंगिंग एंड म्यूजिक. फेक्स अ हॉरिबल परफॉर्मेंस फॉर वॉइस टेस्ट, देन ब्रेक्स आउट इन दिस सॉन्ग. एंड द सेकेंड वन फ्रॉम दिस मूवी इज रियली रियली वेरी फनी सॉन्ग. Picture in Kishore Kumar urging people to come out of their shell or limited world of limited experiences and see the progress in the world. Note, he's chastising a Gujarati, a Maharashtrian, a Bengali through few words in respecting languages. The song has three verses, one in partly Gujarati, one partly Marathi, one in Bengali. Arey bhai nikal ke aa ghar se, arey bhai nikal ke aa ghar se, duniya ke ronak dekh fir se, arey bhai nikal ke aa ghar se. Here are the two songs.
1: आप शुरू कीजिए ना.

0: खामोश, बस बस बस कीजिए।
1: वैसे तो उस्ताद मच्छर खान ने मुझे कुछ दिन तालीम दी थी।
0: ओ, तो फिर उन्होंने बंद क्यों कर दी?
1: क्या बताऊं, फिर वो पागल हो गए।
0: होना ही चाहिए था। देखिए मिस्टर आनंद, ये गाना बजाना आपके बस का रोग नहीं, मेहरबानी करके आप कोई और काम सीखिए।
1: और क्या काम सीखूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: बहुत से काम है जो आप बखूबी कर सकते हैं।
1: मसलन?
0: दंगा, हुलड़बाजी, आवारा गर्दी, रास्ते चलते से छेड़छाड़। बेकार आप अपना वक्त और पैसा जाया मत कीजिए।
2: मिलते ही नजर, मिलते ही

0: घोड़ा।
1: अरे भाई अरे भाई
0: अरे भाई, निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से।

0: देखे पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। CID बिना का नंबर 6 इन 1956। वी आर अबाउट अ मिनट अवे फ्रॉम द टॉप द आवर। एज आई मेंशन्ड आई विल बी स्टार्टिंग 1957 सॉन्ग्स एंड एज आई मेंशन्ड बिफोर मिड टू लेट 50s अर्ली 60s वाज द रियल रियल गोल्डन ईयर ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक। So I think next 3 weeks are going to be 1957 songs. For next week, Asha, Barish, Beguna, Dekh Kabira Roya, Do Aankhe Bara Hath, Bhabhi, Nau Do Gyara, Tumsa Nahi Dekha. The following week, Janam Janam Ke Phere, Mr. X, Pyasa, Paying Guest, Musafir, Nagmani, Champakali, Chankez Khan, Gateway of India, Rani Rupmati. And the following week, हम पंछी एक डाल के कठपुतली मिस मेरी स्वर्ण सुंदरी नौशहरवान यादविल शारदा एंड मदर इंडिया। वी आर अबाउट 20 seconds फ्रॉम द टॉप देवर। लेट मी गो अहेड एंड प्ले सम टॉप देवर अनाउंसमेंट्स। आई विल बी बैक विथ यू राइट आफ्टर दोज।
1: चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक

दैट वॉज फ्रॉम मूवी तूफान उदय। मेरी छोटी सी बहन देखो गहने पहन ससुराल चली रे बंठन के। गीता दत्त सिंग्स फॉर सतीश व्यास द ब्रदर एंड लता मंगेशकर सिंग्स फॉर लता मंगेशकर द सिस्टर नंदा प्लेज दैट रोल। एज आई मेंशन दिस मूवी हैड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स पेन बाय भरत व्यास देयर आर कपल थ्री मीराबाई भजन्स इन दिस पियाते कहाँ गयो पियाते कहाँ गयो नेहा लगाए पियाते कहाँ गयो लता मंगेशकर सिंग्स दैट सॉन्ग। अदर वन गिरधारी माने चाकर राखो जी अगेन मीराबाई भजन संग बाय लता मंगेशकर एंड अदर वन कम्स टू माइंड मुरलिया बाजरी। द नेक्स्ट सॉन्ग आई टू प्ले फॉर यू इज अगेन तूफान उदया बट दिस वन इज लिटिल बिट लेटर ऑन इन द मूवी पिक्चर इन सतीश व्यास राजेंद्र कुमार इज इन हॉस्पिटल वेरी सिक नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट एंड सतीश व्यास डज नॉट नो वॉट टू डू। नंदा हिज सिस्टर इज एंगेज टू बी मैरिड टू राजेंद्र कुमार एंड द सॉन्ग इज मेरी आन भगवान कण कण से लड़ी है तो तुमसे भी आज लड़ेगी मेरी बात तुम्हें रखनी पड़ेगी मेरी आन भगवान। हियर द सॉन्ग।

मेरी आन भगवान कण कण से लड़ी है, तुमसे भी आज लड़ेगी, मेरी बात तुम्हें रखनी पड़ेगी। गीता दत्त सिंगिंग फॉर सतीश व्यास। द कॉन्टेक्स्ट इज राजेंद्र कुमार इज इन हॉस्पिटल वेरी सिक, नॉट रिस्पॉन्डिंग इन ट्रीटमेंट, एंड राजेंद्र कुमार इज एंगेज टू बी मैरिड टू नंदा, सतीश व्यास सिस्टर। द लास्ट सॉन्ग ऑफ तूफान और दिया इज इन द वॉइस ऑफ मन्नाडे, ओनली मन्नाडे कैन डू जस्टिस टू दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। वसंत देसाई भरत व्यास कॉम्बिनेशन अगेन, बिना का नंबर 4 इन 1956। एक्चुअली द मूवी स्टार्ट विद दिस सीरियस सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग एसेंशली आउटलाइन द प्लॉट ऑफ द मूवी। सॉन्ग्स प्लेज इन द बैकग्राउंड एट द टाइटल्स रोल। निर्बल से लड़ाई भगवान की, निर्बल से लड़ाई भगवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की। इंस्पिरेशन मूवी, इंस्पिरेशनल सॉन्ग, हियर इट इज़।

The last two songs of today's show are also from Chori Chori. Both of these are romantic songs. Both of these are picturized on Raj Kapoor and Nargis Dutt. And both of these are Manade Lata Mangeshkar duets. Both of these are penned. Actually, one of them is penned by Hasra Jaipuri, one by Shailendra. First one, Binaka number 16, romantic song featuring Raj Kapoor and Nargis Dutt. Aaja Sanam Madhurchandni Meham. तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल मेरा. द सेकंड वन, लास्ट फॉर टुडे, राग किरवानी तालिस कहरवा. द फर्स्ट वन बाय द वे आल्सो हैज ए क्लासिकल बैंड. द सेकंड वन ऑफ मनाडे लता मंगेशकर ड्यूएट्स. ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा. बिना का नंबर 24, 1957. ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आँख सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा. बोथ सॉन्ग्स इमेंसली पॉपुलर एट दैट टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 70 ईयर्स अगो एंड कंटिन्यू टू बी पॉपुलर. आई रैन इट चोरी चोरी साउंड ट्रैक बाय द रैन इट बाय कपल ऑफ माई younger generation nephews and nieces, and they recognized every single song of Churi Churi. So I guess these nephews and nieces are in 30s, mid to late 30s kind of time frame. So enjoy these two songs, and I'll see you next week with songs of 1957. That'll go on for 3 weeks, by the way. See you next week.